याद है तू, बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता नहीं, दोनों हाथों से कभी

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मैं

0: lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: उजाला रेडियो रातों दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जाएं बरिखी स्टूडियो नार ओंसे स्टूडियो हाँ विल जाएं बरिखी स्टूडियो नार ओंसे स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रातों दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

उजाला रेडियो है ये, और इस हिस्सा का प्रोग्राम में कुछ रोमांटिक गीतों हम सेलेक्ट किए हैं आपके लिए।

दिल है कि मानता नहीं, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग और उसी डुओ कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल से अभी आप सुने।

फिल्म आशिकी का गीत धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। उजाला रेडियो द लेक्स्ट टॉक।

ना जाने कहां दिल खो गया। फिल्म का नाम दिल और गीत के गाने वाले अनुराधा पौडवाल एंड उदित नारायण।

काम के वजह से और भी कुछ वजह से हमने प्रोग्राम नहीं पेश किए हैप्पी कथे प्रोग्रामानी थमाक मार वो सैंड वी फंदा आज हम फिर हाजिर हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह जोमदेन अभी आने वाले हैं यहाँ स्टूडियो में उमरिया कटती जाए रे या घटती जाए रे रोहित छेदी के आवाज में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं

ओ कैरल ओ कैरल, अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनवालो। Het is vandaag boudoir, 27 mei का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और उजाला कॉफी चाय मेरा शो में अभी आने वाला है वही आदमी। या ना कम दिमाग ही बिन और हमने कौन सी पहन के आएगा मैं कन्हैया, इतना गर्म वे रहा तो कन्हैया सीकर कोट ब्रुक पर है। मैं आज वीरवा एकदम से फरामदर हो गए हैं, योर तो का मस्टेम तो जाना तो वीरवा जी फरामदर हुए है, ज्यादा मुझे वेल एक्स्ट्रा अलर्ट ऑफ जाए। Je moet je aanpassen met het weer, of door het weer. Want toen zocht ik je van, aan het garm heen ga, dus ja, of je denkt van, ah, het naar garm nou heen ga, maar ja, vergis je niet hoor. Maar aan het door het handen heb je weer. Kan je naar 30 graden, aan het 20 graden.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बेचैन होके हम तुमसे मिले। फिल्म कसूर अलका याग्निक एंड उदित नारायण, इन दोनों से आप सुने और ये उजाला रेडियो है।

और रब्बा आई ना जुदाई, फिल्म जुदाई का टाइटल सॉन्ग आप सुने अलका अलका याग्निक, हरिहरन और जसपिंदर नीरू।

0: WNUR.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontrole zorgt voor vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de file en doe je er 10 minuten extra over. De A58 dan, richting Eindhoven. Goed nieuws, want ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je er nu nog een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
4: उजाला रेडियो पर अब आप सुनिए एक खूबसूरत गीत उजाला, तू जाने तो।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
1: उजाला रेडियो पर अब आप सुनिए एक खूबसूरत गीत उजाला, तू जाने तो।

ओ कैरल ओ कैरल अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनने वालों। Het is vandaag boudoir, 27 mei का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और उजाला कॉफी चाय मिदा शो में भी आने वाला है वही आदमी। या ना कम दिमाग ही बेन और हमने कौन सी पहन के आएगा मैम कन्हिया इतना गर्म वे रहा दुस कन्हिया सीकर कोर्ट ब्रुक पर है। आज वीरवा एकदम से फरामदर हो गए हैं योर तो का मुस्तैम तू जाना तो वीरवा जी फरामदर हुआ है यादा मुझे वेल एक्स्ट्रा अलर्ट ऑफ जाए Je moet je aanpassen met het weer. Of door het weer. Want toen zocht je van aard garm heen gaat. Dus ja, of je denkt van ah, het naar garm nou heen gaat. Maar ja, vergis je niet hoor. Maar aard tot handen heb je weer. Kan je 30 graden, aard 20 graden.

मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

छह बजकर आठ मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, बुधवार है और वो भी 27 तारीख। मैं मतलब ये कि इस महीने का आखिरी बुधवार है, लास्ट वेडनेसडे। शुभ रात्रि आप सभी। छह बजकर आठ मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, बुधवार है और वो भी

आत्री आप सभी को हम कह रहे हैं, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब बरसाएं। और क्योंकि बुधवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, तो आपका सेवा फिर एक बार हम करेंगे लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और जो आज फिर एक बार हम सजाएंगे बनाएंगे और वो भी तीसरी बार, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद जी, इनके मूवी से आज फिर एक बार एक प्लेलिस्ट को सजा रखा है, गाने जो इन पर पिक्चराइज किया गया है इनकी मूवीज में हम लेकर आए हैं, और उसी प्लेलिस्ट से निकालकर 9 बजे रात्रि तक गाने निकाल निकाल कर आप तक हम पेश करेंगे। तो स्वागत है, एक शुभ रात्रि आप सभी को कहते हैं। वैसे ऐसे तो नहीं लगता है कि रात्रि है, अगर आप बाहर देखोगे तो सूरज अभी तक अपना खूबसूरत गर्मी से हम सभी को बाहों में जिकेर लिया है, और बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है आज आजकल, और काफी लोग इस मौसम के साथ काफी मजा ले रहे हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भी, जो लोग को टर्न है, बाग बगीचे है, बालकनी है, तो वहां पर एंजॉय भी करते हैं। ऐसे मौसम में तो मौका मिलते हैं अपने बाग बगीचे में बैठने में, तंदरंग के वहां खाना, शायद कुछ बारबेक्यू हो रहे हैं इत्यादि, तो आप मजा ले जिस तरह से भी आप चाहें, जिस तरह से आप चाहो। और हमारे तमाम प्रिय सुनने वालों, खास करके मुसलमान भाई बहनों को हम ईद उल अदा का मुबारकबादियां दे रहे हैं। ईद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे प्यारे सुनल, हमारे ये प्रोग्राम के दौरान हमेशा की तरह आप व्हाट्सएप कर सकते हैं भी, स्टूडियो में सीधे आपका व्हाट्सएप आएंगे 020-363-0000 पर, 020-363-0000 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप है। और रहे आपके कामों काज के लिए, आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी, इंफॉर्मेशन जो आप प्राप्त करना चाहोगे, तो उजाला रेडियो को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए या तो तार के जरिए। तार अगर आप करेंगे तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, फमानख तो तुम्हें 7 रख इन ओख्तन 3 यूर तो तुम्हें इन मेरा 3 यूर आप तार कर सकते हो 02-04-09-08-07 020-409-0007 नंबर फॉर ऑन्स कंट्रोल। और मेल करना चाहोगे मेरे प्यारे से नोला, दत्त करना ट्यूलक आलताइट एनी मोमेंट, एंड दत्त करना info@ujala.nl आपके हर एक कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते। सो बहुत और ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए हम आपको ले चलते हैं आज का पहला गीत की ओर। और पहला गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, 1982 का फिल्म स्वामी दादा से हम नगमा निकालेंगे, एक नगमा अनजान साहब जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार आर डी बर्मन, राहुल बर्मन, किशोर कुमार और कोरस यानी कि किशोर कुमार और साथियों से आप सुनेंगे ये नगमा। हाँ जी, ये नगमा

0: प्यार दो, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे। आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सिनोलो किशोर कुमार की आवाज और साथ दे रहे थे कोरस अनजान साहब जी का लिखा हुआ नगमा इन्होंने गाकर सुनाए हैं। आर जी बर्मन राहुल बर्मन के साज और संगीत पर 1982 का फिल्म स्वामी दादा से हमने नगमा को निकाले। और खास बात यह है मेरे प्यारे सुनने वालों की, ये फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी हैं। इनके अलावा फिल्म में भी काम किया है, जरा मैं देखूं तो मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, पद्मिनी कोल्हापुर, शक्ति कपूर, ए के हंगल, जैकी श्रॉफ, कुलभूषण खरबंडा, नाजीरुद्दीन शाह, सुधीर डालवी, भरत कपूर, सुषमा सैद और उर्मिला भट्ट। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सिनोलो, 17 मिनट गुजर चुके हैं। और वो भी 6:00 मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर। और अगले गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, जॉनी मेरा नाम का एक नगमा हम आप तक पेश करने जाएंगे। जॉनी मेरा नाम देवानंद साहब जी का एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है और ये फिल्म के गाने भी लाजवाब बेमिसाल है। पिछले दो प्रोग्राम में शायद मैंने आपको एक दो सुना चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इंदवर साहब जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक लेकिन छेड़छाड़ सॉन्ग मैं पेश करने जा रहा हूं। संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी और जॉनी मेरा नाम फिल्म 1970 का है, नहीं 1970 और मोई फिल्म और एक मोई फिल्म और किशोर कुमार गाकर गीत सुनाएंगे।
1: खुला तो मैं दंग रह गया, दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है और चक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग जैसे मैंने कहा, और थोड़ा सा छेड़छाड़ भी इस गीत में था ना। गीत से पहले डायलॉग भी आप सभी ने सुने हैं देवानंद साहब जी का। किशोर कुमार ने गीत को गाए हैं, इनवर ने लिखे, संगीतकार कल्याण जी अनान जी। जोनी मेरा नाम का ये एक नगमा है मेरे प्यारे सुनने वालों। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर देव साहब जी के छोटे भाई विजय आनंद है, ऑफ ट्वेल मिस्टर गोली गोल्दी आनंद। हाँ जी, गोल्दी। और देवानंद ने हेमा मालिनी जी के साथ ये फिल्म में काम किया है। प्राण साहब जी भी है, प्रेमनाथ आयस जौहर जीवन पटमा खन्ना। मूवी फिल्म है। थोड़ा सा गर्मी फिर एक बार हो गया है यहाँ स्टूडियो में, तो मैं गीत आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ ये ठंडा वाला जो करे वाला मशीन है ये हमने ऑन क्यों नहीं किया। मनपसंद की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनोलो। एक आप देख रहे हैं, हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में आपको बहुत शेक करता हूँ, कभी नीचे कभी ऊपर। हम चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, अच्छे से शॉर्ट फन एक्सरसाइज है। एक त्रापू नेर है तो हम लोग चढ़ी ला उतरी ला। तो 70 से फिर हम चढ़ेंगे, जाकर पहुंचेंगे 80। नी है तीन तख्त। फिल्म का नाम मनपसंद मेरे प्यारे सुनने वालों, और मनपसंद का एक नगमा जो किशोर कुमार गाएंगे, अमित खन्ना जी ने जो लिखा और जिसका संगीतकार राजेश रोशन, डट भरे गीत में गिना जाता है। मैं अकेला अपनी धुन में मैं मगन पेश करता हूँ हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में। प्रोग्राम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से बनाया जा रहा है मेरे प्यारे सिनेमा वालों।

अकेला अपनी धुन में मगन में जा रहा था। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, अमित खन्ना का लिखा हुआ गीत दड़ भरा किशोर कुमार ने गाकर सुनाए हैं राजेश रोशन के साज और संगीत पर। 1980 का फिल्म मनपसंद से हमने ये नगमा को निकाले और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों बासु चटर्जी का डायरेक्ट किया हुआ है। देवानंद साहब जी, टीना मुनीम, महमूद साहब, गिरीश कर्नाट, जलाल अग्गा, सिंपल कपाड़िया, बिरबल और लीला मिश्रा का एक फिल्म। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। अब जाकर टनी से ठंड मुझे लगी, क्या करूं, आज तो वैसे बीते हुए दिनों की तरह बहुत गर्म नहीं है लेकिन फिर भी गर्म है। स्टूडियो मागते तो एक्स्ट्रा वर्म मेरे प्यारे सुनो, आपको हम ले चलेंगे फिर एक बार वापस 1970 के ओर। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी और प्रेम पुजारी का एक पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग नीरज साहब जी का लिखा हुआ सेवा में पेश करने जा रहे हैं।

फूलों के रंग से दिल के कलम से तुझको लिखी रोज पाती। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा हमें हर एक जन्म में, या हमें लेना पड़ेगा जन्म कई बार। हाँ, ऐसा होना चाहिए। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे से नॉलो ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, और नीरज जी का लिखा हुआ ये गीत है। संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। प्रेम पुजारी का एक नगमा है, प्रेम पुजारी फिल्म 1970 का है। नहीं, ये फिल्म भी इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, और फिल्म में काम किया है वहीदा रहमान जी के साथ, सहिदा, सचिन पिलगांवकर, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, नजीर हुसैन, इफ्तखार, अनूप कुमार।

धुमानंद साहब जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज तीसरी प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर में हियर ऑन यू आर। मेरे प्यारे सुनने वालों, नगमाएं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है आप तक हम पेश कर रहे हैं। और देव साहब जी तो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन इनकी खूबसूरत मूवीज और मूवीज में इनके खूबसूरत गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे उनकी यादगार बनकर। एक ऐसे ही मूवी है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फिल्म का नाम है देश परदेश। फिल्म और ये फिल्म जो है इसमें से गीत हम निकालेंगे अमित खन्ना जी का लिखा हुआ, वंस अगेन किशोर कुमार राजेश रोशन संगीतकार, देश परदेश फिल्म का नाम, और नगमा नजराना भेजा किसी ने प्यार का।

0: नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनोलो किशोर कुमार अमित खन्ना जी का लिखा हुआ गीत है ये, राजेश रोशन संगीतकार, और फिल्म का नाम देश परदेश। मेरे प्यारे सुनने वालों, देश परदेश 1978 का फिल्म है, निहति नख्तन सीवंत। इत्तेफाक से ये भी एक मूवी है जो देवानंद ने प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट किया है। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद का मास्टर कंपोजिशन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। और ये मूवी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टीना मुनीम जी को, और फिल्म में और कौन है, इंद्रानी मुखर्जी, अजीत साहब जी, प्राण साहब जी, अमजद खान, बिंदू टोमेल्टर, प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर श्री राम लागू, भारत कपूर, सुचित कुमार और बहुत सारे और लोग भी हैं। महमूद साहब जी, हाँ जी, महमूद साहब जी भी फिल्म में हैं। देव साहब जी का एक और मूवी जिसमें तमाम नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है मेरे प्यारे सुनने वालों, उसके लिए अख्तन सीवंत से हम वापस जाएंगे 1971, निहति नैनन सीवंत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, और गैम्बलर का आज एक डट भरा गीत हम निकालेंगे और आप तक हम पेश करेंगे। ये गीत जो है नीरज साहब जी ने लिखा, और सचिन देव बर्मन यानी कि एस देव बर्मन संगीतकार है। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, किशोर कुमार की आवाज।
1: शायर है

दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। किशोर कुमार की आवाज, नीरज जी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार एस दे बर्मन। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1971 का फिल्म गैम्बलर से हमने नगमा को निकाले। अमरजीत ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। देवानंद साहिरा, शत्रुघ्न शत्रुघ्न सिन्हा साहिदा, इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे 7 बजे की ओर। मेरे प्यारे सुनने वालों, कोशिश करता हूं दो नगमाएं और आप तक पेश करने का। पहला गीत फ्रॉम द मूवी डार्लिंग डार्लिंग। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1977 का एक नगमा, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ। राहुल डोबर्मन संगीतकार, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। एक मैं हूं और एक तू।

एक मैं हूँ एक तू और क्या चाहिए, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं आर डी बर्मन राहुल बर्मन के साझा और संगीत पर। 1970 का मूवी डार्लिंग डार्लिंग से हमने नगमा को निकाले, जिसका डायरेक्टर गोगी आनंद, देवानंद सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, महमूद जीवन का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनोलो, आखिरी गीत इस घंटे का, इस गीत के बाद ब्रेक होंगे। ये गीत किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे, फिल्म का नाम ये गुलिस्तां हमारा। देवानंद साहब जी का ये फिल्म 1972 का है, आनंद बख्शी जी ने लिखा, सचिन देव बर्मन संगीतकार, आत्माराम फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, देवानंद साहब जी शर्मिला टैगोर, इन दोनों का एक फिल्म। पेश है नगमा गोरी ओ गोरी, मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे सिनेमा वालों।

बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, अनजान साहब जी का लिखा हुआ नगमा इन्होंने गाकर सुनाया है कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम भी है बनारसी बाबू, मतलब ये कि टाइटल सॉन्ग सेवा में जो हमने पेश किया है आप सभी ने भरपूर सुने और शायद भी एंजॉय की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1973 का फिल्म है नीख इंद्रियन सी, शंकर मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का एक फिल्म विद जोगीता बाली, राखी गुलजार, जीवन साहब जी और मनोरमा। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, 11 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 60 बजकर। लाइव यू आर के स्टूडियो रोटरडम से आप सुन रहे हैं बैक टू द फ्यूचर, और बैक टू द फ्यूचर में आज तीसरी बार हम सजा रहे हैं प्रोग्राम एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का। बहुत सारे मूवीज इनका जो बने हैं, बहुत सारे हसीन गाने भी, लाजवाब बेमिसाल वाला इनके मूवीज में भी है। तो 3 हफ्ते से इनके खूबसूरत गाने निकाल निकाल कर प्लेलिस्ट को हम सजा रहे हैं, और बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ निकाल निकाल कर एक एक हीरा आप तक हम पेश कर रहे हैं। तो उम्मीद और आशा ये भी हम करते हैं मेरे प्यारे सुनोर कि आप भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। व्हाट्सएप आप करना चाहोगे स्टूडियो में तो ये मुमकिन है मेरे प्यारे सुनोलो, सीधे स्टूडियो में आपका व्हाट्सएप आएंगे 0 20 3 0 0 0 पर आपको ऐप करना है 0 20 3 0 0 0। और ये कश्य कुछ लोगों ने उठाए हैं, मैं देखता हूँ आइलिन ऐठारलेम, प्रभा जी ऐतम सनाम सेंत्रम, स्वागरी सरवन नाइजी ऐत लाइडोडोरप, मिके जी ऐत दनहाख, फिर एंद्रू और चित्रा जी ऐत मार्सब्रुक, आईफी जहांगीर ऐत अम्सदम, और अम्सल फेम का सुशीला चंद्रिका सिंह जी। आप सभी को दिल की गहराइयों से डंकीवेल, धन्यवाद, शुक्रिया। अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सिनेमा जाने मन है, जाने मन, और ये फिल्म जो है 1976 का है नहीं हतीन सेशन सी। ये फिल्म से गीत निकालेंगे एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार के साथ लता जी की आवाज आप सुनेंगे। गीत जो मैंने प्लेलिस्ट पर रखा है कि की गल है कोई नहीं, कुछ इस तरह का एक नगमा किशोर कुमार और लता जी।

कीगल है कोई नहीं। किशोर कुमार और लता जी की आवाजें मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं लक्ष्मीकंद प्यारे लाल की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम जाने मन मेरे प्यारे सुनने वालों, 1976 का फिल्म है, निहतिन सेशन सेवन, एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, इनके बड़े भाई चेतन आनंद जी ने मूवी को डायरेक्ट किया है और देव साहब जी के अलावा हिरनी जैसी आंखें वाली हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल भी मूवी में काम किया है। प्रेमनाथ भी है, पैंटल, अजीत दुर्गा खोटे, जगदीश राज, इफ्तखार और बहुत सारे लोग। फिल्म जाने मन। मैं सोचता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, देव साहब जी पर कुछ फरमाइश सॉन्ग्स पिक्चराइज किया गया है, चला दूं एक दो तीन हमारे नजर में आ रहे हैं तो मैं सोचता हूं चला डालूं, क्यों क्या ख्याल है? आपको तो मालूम है मुझे फरमाइश गाने बहुत अच्छे लगते हैं। फरमाइश गाने, लोरी सॉन्ग, बिराई सॉन्ग्स, जन्मदिन के गाने, तू जाने तो शादी, इन सब सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। और ये सब सारे नगमाएं जो है मेरे प्यारे से नौला, आजकल बहुत कम फरमाइश किया जाता है। मार दलीच सैन सो खवेल, आपको फरमाइश करना चाहिए। और उजाला रेडियो पर बहुत दिनों से 15 फरमाइश 100 यूरो, 100 यूरो के 15 फरमाइश, और कहा लिए रे। मैं आपको ले चलता हूं मूवी की ओर। फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्ण और ये फिल्म जो है 1972 का है, निहतिन ट्वीन सेवन, एक बहन भाई राखी वाला सॉन्ग है ना, लेकिन शादी में भी ये गीत फरमाइश किया जाता है, फरियाड़ी में भी, अगर जन्मदिन हो, सालगिरह हो, भाई बहन का प्यार। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, राहुल बर्मन संगीतकार, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। फूलों का तारों का सभी का कहना है कि 1000 में मेरी ये बहना है।

तारों का सभी का कहना है कि एक हजारों में मेरी ये बहना है, सारी उम्र हमें तो संग रहना है। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत किशोर कुमार ने गाए हैं आर डी बर्मन, राहुल बर्मन की साज और संगीत पर। हरे राम हरे कृष्ण फिल्म का नाम और ये फिल्म 1972 का है, और ये फिल्म भी प्रोड्यूस डायरेक्ट और इसमें एक किया है एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, मुमताज के साथ फिल्म में काम किया है एन नटूरलक सीनतमान, जूनियर महमूद, रजिंद्र नाथ, आंशला सखदेव, इफ्तकार और प्रेम चोपड़ा भी है, किशोर साहू, राज किशोर, इंद्रानी मुखर्जी, सुधीर। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनवालो 3 मिनट बाकी है सरे 7 बजने में, 3 मिनट फोर ओ क्लॉक फन हाल अफा मफराओ एन मनेर बिहारी जी अदबरीदा, आपके आपके लिए दिल से धन्यवाद। उषा जी दनाक से आपको भी धन्यवाद हम कहते हैं आपके आपके लिए, आप भरपूर एंजॉय करें, बस यही उम्मीद और आशा में हमेशा हम लगा रहता है। कोशिश करता हूँ अच्छे अच्छे पुराने खूबसूरत नगमाएं हर एक बुधवार ले आने का, एक कलाकार ऐसे जिसका प्रोग्राम हम बना सके, सजा सके और इस यकीन के साथ कि आप सुनते वक्त भी मनोरंजन प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे नगमाओं के साथ। मेरे जो एक भाई है आमस्टरडम में जो रहते लेकिन इस वक्त स्पाइन में मजा ले रहे हैं, तो भैया गलत टाइम पे आपने गए स्पाइन, क्योंकि मौसम का हालात तो यहाँ बहुत खूबसूरत है, स्पाइन में शायद और भी गर्म होंगे लेकिन फिर भी इतनी दूर जाकर आपने चून किए हुए हैं। नरेश दिहाल डंकी वेल धन्यवाद आपके आपके लिए और भरपूर आप एंजॉय करें मजा लें। भैया सुनील आयत अम्सदम आपको भी तहदिल से डंकी वेल हम कहते हैं चून करने के लिए, भैया सुनील भी हमेशा चून किए करते हैं और जब भी आपको मौका मिलते हैं आप सपोर्ट करते हैं, आप एप करते हैं, डंकी वेल सुनील। हाँ फरमाइश के गाने हम चला रहे थे, एक शादी वाला सॉन्ग हो जाए क्यों, क्या बात है, ठीक है ओके रखावत हो दून। आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ एक शादी वाला सॉन्ग है, मेरे प्यारे सुनने वालों किशोर कुमार जो गाएंगे राहुल बर्मन की साज और संगीत पर, फिल्म का नाम वारंट और वारंट जो है 1975 का फिल्म है। सुनो भाई बाराती अरे दुल्हा दुल्हन को अकेला जरा छोड़ो, रिमेंबर दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनो वालों बैक टू द फ्यूचर, हर एक बुधवार के रात्रि को 6 से 9 बजे लाइव एंड डायरेक्ट फन हर्ट स्टूडियो रोटरडम अप यू आर।

अरे दुल्हा दुल्हन को अकेला जरा छोड़ो, प्यार भरे बातें करे तो जीवन साथी। किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, और साथ दे रहे थे साथियों कोरस आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ गीत, ये शादी वाला गीत आनंद बख्शी जी ने लिखा, संगीतकार आर डी बर्मन, राहुल बर्मन पंचमदा, और फिल्म का नाम वारंट। वारंट 1975 का फिल्म है, 1975। प्रमोद चक्रवर्ती जी ने जो डायरेक्ट किया है, और देवानंद साहब जी, सिनेतमान प्राण अजीत, दारा सिंह, सतीश कौल, मदनपुरी बीरबल, यंकी दास, सीमा कपूर, विजू खोटे, ललिता पावर, सुचित कुमार, जगदीश राज और शेट्टी का एक फिल्म। फरमाइश वाले सॉन्ग हम पेश कर रहे हैं, और मेरी नजर में एक और है, वो भी हम पेश किए जा रहे हैं। ये भी कम रोमांटिक नहीं मेरे प्यारे सुनवालो, व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग, ओ माय गॉड। और ये तमाम नगमाएं आप फरमाइश कर सकते हैं मेरे प्यारे सुनवालो, सेन प्रख्तक नुमर्स, ओल्ड इज गोल्ड, आपको तो मालूम है ओल्ड इज गोल्ड। और फरमाइशी उजाला रेडियो पर बहुत दिनों से, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, एक नगमा जो सचिन देव बर्मन, एस देव बर्मन के साज और संगीत पर मिलकर गाएंगे लता जी और किशोर कुमार। फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने, तेरे मेरे सपने 1971 का फिल्म है, 1971। और गीत के कुछ लाइनें कि जीवन की बगिया महकेगी, चहकेगी, लहकेगी, अरे भैया, हीरो निवार पेश करता हूँ।

की बगिया महकेगी, लहकेगी चहकेगी और खुशियों की कलियां फूलेंगी। या प्रातः मेरे प्यारे सुनो लो, व्हाट अ सॉन्ग। कभी कभी आप यकीन नहीं मानेंगे, हम गीत में गुम हो जाते हैं, गीत के शब्द में, इनकी आवाजों में सुनते सुनते हम एकदम गुम हो जाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अल्फाजे, ये शब्द जो है कितनी खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत आवाजें हैं किशोर कुमार और लता जी का, और संगीतकार सचिंद्र बर्मन की म्यूजिक, और जिन्होंने लिखा उनके हाथों को तो चूमना चाहिए। व्हाट इंस्पिरेशन, क्या कमाल के गीत इन्होंने लिखा है, नीरज साहब जी। फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने, मेरे प्यारे से नौ 1971 का फिल्म है। निहति नैनन सेवंत, एक फिल्म प्रोड्यूसर एक्टर देवानंद साहब जी, इनके छोटे भाई विजय आनंद ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। मुमताज हेमा मालिनी डायरेक्टर, यानी कि छोटा भाई गोल्डी आनंद यानी कि विजय आनंद ने भी मूवी में काम किया है। और इन सभी के अलावा बहुत सारे लोग, ब्यूटीफुल मूवी देखा नहीं तो जरूर देख ले लेना चाहिए, तेरे मेरे सपने। इफ ऑन डाउनलोड डंक वेल फॉर ये एप, एंजॉय यू आर एंड हिल्फुल सक्सेस मैच इन यू वोनिंग। और डनहा शहर से भैया हैनी बदलू जी के एप भी आए हैं, बहुत बहुत डंक वेल हैनी। याक का ये नोहेल खुद हरिंदर भैया, और बेहद खुशी है हम कि आज आपने पहली बार हमारे हिस्से के प्रोग्राम में आपने ऐप किए हैं, स्टूडियो में सीधे आपके देखो ना ऐप आए हैं, और बस आप ही का साथ, आप ही का प्यार का भूखा हम हैं। उस तरफ हम आपको नहीं देख रहे हैं, एक सी ही दकनों पर एंड ऑल द कंप्यूटर्स एन आलस ड्राइट एन लोप्ड, लेकिन उस तरफ किस तरह से ये गाने, हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह से अंदर आते हैं, किस तरह से मेरे हिस्से का उजाला आपके घरों के अंदर आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोग ऐप करके ये बता रहे हैं कि आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, तो आज से तो आप सभी ने मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू लिवेल, थैंक यू लिवेल। हम आपको ले चलते हैं अगले मूवी की ओर, मेरे प्यारे सिने वालों। फिल्म का नाम है प्रेम शास्त्र, और प्रेम शास्त्र का एक नगमा जो आनंद बख्शी जी ने लिखा और जिसका संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है, और किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी को आप सुनेंगे। नाम हमारा मशहूर हो गया,

0: हाँ, नाम हमारा मशहूर हो गया, मान गए और पहचान गए, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं, और वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साझा और संगीत पर। प्रेम शास्त्र फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1974 का है। निहत इन्फिरन सीव अमजीत ने प्रोड्यूस किया है, और बी आर इशारा डायरेक्टर। देव साहब जी का ये फिल्म सीना तमान के साथ, बिंदू, आयस जोहर, असीत सेन, अनवर हुसैन, देवत साहब जी का ये फिल्म है। रात को आप सोने जाएं, और खास करके इस तरह के गर्मी मौसम में, और याद को मन मुख द जूजूस द खलाइड आवाजें आ रहे हैं रात के है? और खतमल भी आएंगे, है ना? तो हम तो भैया डर नहीं रहते इन सब चीजों से, मैं नहीं डरता, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं, इनकी नींद हराम हो जाते हैं। चिराग फेरा ऑन करके ढूंढते रहते हैं कि ये माछी कहाँ है, इन्हें पहले मैं इन्हें एलिमिनेट कर दूं, उसके बाद मैं इत्मीनान से सो सकता हूं। मैं वो सब सारे झंझट में नहीं पड़ता, मुझे काटना है तो काटो, खून चूसना है तो चूसो, हम तो भैया इत्मीनान से सोएंगे। एक नगमा की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनो, फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम, और ये जो फिल्म है 1973 का है। निहतिन द्रियन सेवंत नीरज का लिखा हुआ एक नगमा हम आप तक पेश करेंगे। आपको मालूम रहे, वैसे तो ये गीत रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है, यकीनन रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है। दिस अथीफ तंबीच या मुसालिकत से है, इसमें एक ट्विस्ट है। सचिन देव बर्मन संगीतकार, मेरे प्यारे सुन वालों, किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे ये नगमा कि धीरे से जाना खटमल में।
1: हे समल सुर पकड़ के, धीरे से जाना, धीरे से जाना खटियन में।

धीरे से जाना रे बगियन में, रे भौरा धीरे से जाना रे खटियन में। किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। नीरज का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाया है, एसडी बर्मन की साज और संगीत पर। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम, छुपा रुस्तम 1973 का फिल्म है। निहंत इंद्रियन सिंह देव साहब जी ने प्रोड्यूस और एक्ट किया है। छोटे भाई विजय आनंद यानी कि गोल्डी आनंद ने डायरेक्ट किया है। हेमा मालिनी विजय आनंद ने भी मूवी में काम किया है। बिंदु के साथ अजीत भी है, प्रेम चोपड़ा और एके हंगल प्रेमनाथ। इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, उसके बाद ब्रेक होंगे वो भी 8 बजे का, और 8 बजे के बाद हम द 60s में चले जाएंगे, वहां से गाने निकाल निकाल कर आप तक पेश करेंगे। और आखिरी मूवी इस घंटे का, फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश, और शरीफ बदमाश 1978 का फिल्म है। निखंत इंद्रियन से एक छेड़छाड़ सॉन्ग आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूँ। राहुल डबरमन की साज और संगीत पर किशोर कुमार को आप सुनेंगे। एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर वो है देवानंद साहब जी, और शरीफ बदमाश का डायरेक्टर राज खोसला, हेमा मालिनी, अजीत जीवन, भगवान दादा ने भी ये फिल्म में काम किया है। मेरे प्यारे सुनोल, आप एंजॉय करें इस गीत के साथ, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार विद देवानंद। तीसरी हिस्सा बैक टू द फ्यूचर ऑन यू आर, बैक टू द फ्यूचर में वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोहतक नाम से।

मेहमान हम हैं और ये प्यार जो है तुमसे हो गया है। या सुनो का बादशाह दलेजन पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, और वो भी हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने गाकर सुनाए शंकर जयकिशन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम दुनिया मेरे प्यारे सुनने वालों दुनिया 1969 का फिल्म है। निहति नेहनन सेसख एक फिल्म जिसका डायरेक्टर प्रकाश टी राव है और देवानंद साहब जी, विजयंतीमाला, प्रेम चोपड़ा, द ग्रेट बलराज सानी, जॉनी वॉकर, मदन पुरी, ललिता पावर, इन सभी का एक फिल्म है। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और घड़ी की तरफ मैं देखूं तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 11 मिनट ओवर आख की ओर। अभी होंगे मेरे प्यारे सुनने वालों 8:11 और हम द 60s में आन पड़े हैं और धीरे धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे द 50s की ओर, लेकिन हम 50s में आ पाएंगे या नहीं ये वक्त बताएंगे। बैक टू द फ्यूचर है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और स्टेशन का नाम उजाला रेडियो, लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। आज तीसरा हिस्सा हम पेश कर रहे हैं द एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद जी, इनके मूवी से निकाल कर इन पर पिक्चराइज किया गया खूबसूरत नगमाएं आज के प्लेलिस्ट पर या प्लेलिस्ट में सजा रखे हैं, और उसी प्लेलिस्ट से निकाल निकाल कर एक एक हीरे आप तक हम पेश कर रहे हैं। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो दुनिया फिल्म के बाद हम वहान वेल नार 50 1955 मेरे प्यारे एक वास नहीं खबर भैया 1955। वेल हमारे प्रिय जो है सही लुधियानवी जी, इनका लिखा हुआ गीत, एक दर्द भरा गीत मैं पेश करने जा रहा हूं, और गीत दादा हेमंत कुमार जी गाएंगे एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। हेमंत कुमार जी को हम पेश करते हैं।

तेरी दुनिया से या तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि हम मर जाएं। दादा हेमंत कुमार जी की आवाज में गीत आप सभी ने सुना है, डट भरे हमारे प्रिय सहेल लुधियानवी जी इनके लिखे हुए नगमा। दादा हेमंत कुमार जी ने गाकर सुनाए सचिंद्र बर्मन के साझा और संगीत पर हाउस नंबर 44 से गीत हमने निकाले हैं और ये फिल्म 1955 का है। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का प्रोड्यूसर और एक्टर देव साहब जी और डायरेक्टर है एम के बर्मन और मैं देखता हूँ कल्पना कार्तिक भी फिल्म में काम किया है जो देव साहब जी की स्पाउस है। इनकी वाइफ है और या था वन देव साहब तो अब जी नहीं रहा। केन सिंह भगवान दादा कुमकुम इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। टूनी इसरी अर्थ ले लिस्ता दंकीवेल आपके अब के लिए और माइस देनाह का सॉरी अम्सदाम अम्सदाम या अम्सदाम डंक दंकीवेल और बेहद खुशी है हम कि आप दोनों भी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय क्योंकि और भी खूबसूरत गाने आने वाले हैं। वैसे तो हम आन परे हैं द 60s और द 50s में आपको झुला रहे हैं। अब देखो ना 55 से हम आपको ले चलेंगे 10 साल ऊपर। नाउ सेल्स 30 यार बोव ननी हंती नाख्तन सेस्ता या वेल 1968 फिल्म का नाम है महल और महल का एक खूबसूरत गीत आप तक पेश करेंगे। ये फिल्म जो है इसमें बहुत सारे हसीन गाने हैं महल और एक आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग मिलकर गाएंगे किशोर कुमार और आशा जी नगमा को और वो भी कल्याण जी आनंद जी के साथ और संगीत पर कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई और ये बात किसी से ना कहना।

ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई और ये बात किसी से ना कहना। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं और वो भी कल्याण जी हनान जी के साथ, और संगीत पर फिल्म का नाम महल मेरे प्यारे सुनने वालों, महल फिल्म 1969 का है, निहति नेहनन सेसर, शंकर मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ, देव साहब जी और आशा परेक का एक फिल्म। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, या वखान फान निहति नेहनन सेसर, हम आपको वापस ले चलेंगे 1956 की ओर, निहति सेसन फाइव तक। फिल्म का नाम है CID और CID का एक रोमांटिक लेकिन मस्ती भरी गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ सेवा में पेश करने जा रहा हूँ। गीत मिलकर गाएंगे शमशाद बेगम जी और द लेजेंड रफी साहब जी, और वो भी ओपन नैयर के साज और संगीत पर, किले के पहला पहला प्यार।

लेके पहला पहला प्यार करके आंखों में घुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। शमशाद बेगम और रफी साहब जी की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये प्यार भरा मस्ती भरी गीत, और संगीतकार थे उपेन नैयर। 1956 का फिल्म सीआईडी से हमने खूबसूरत गीत को निकाल कर आप तक पेश किया है, और ये फिल्म का डायरेक्टर राज खोसला, देव साहब जी और वहीदा रहमान का एक फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिसमें शकीला भी है, कुमकुम, केएन सिंह और शीला फास। भैया राजेश सिंह रोहतनाम शहर में भी प्रणाम से जुड़े हुए हैं, तो डंकी वेल जुड़ने के लिए उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भी भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आपको ले चलते हैं 1968 की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। नीखती नाख्तन सिस्तख, एक गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, रफी साहब जी की आवाज में आप सुनेंगे, शंकर जयकिशन की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम कहीं और चल, और गीत का बोल है डूबते हुए दिल को तिनकने का सहारा भी नहीं। मालूम पड़ता है दर्द भरे गीत है। पेश करता हूं सेवा में, हियर ऑन यू आर, बैक टू द फ्यूचर में।

डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा कोई नहीं। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे से नॉन ऑर्डर भरे गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ इन्होंने गाकर सुनाए हैं, और वो भी शंकर जयकिशन की साझा और संगीत पर। कहीं और चल फिल्म का नाम, कहीं और चल 1968 का मूवी है, निहती नाख्तन सिस्तख, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर विजय आनंद और देवानंद आशा परेख का एक फिल्म है। 6 मिनट गुजर चुके हैं सरे 8 बजकर, मेरे प्यारे सुनने वालों, 6 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल्फ नीह, और 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको भी ये मालूम रहे कि कल जो इस महीने का आखिरी दोनडा है, बृहस्पतिवार है, हम आपकी सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल की आवाज कल रात्रि को 8 बजे रात्रि से मोरखनाफन फनफ अख्तूर तुत एलव्यूर सेवा में हम पेश करेंगे विद रोमांटिक सॉन्ग्स और ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर मेरा साथ देंगे। मोरखनाफन डोंडडाख हियर ऑफ यू आर लाइव फनाइट स्टूडियो रोटरडम, प्रोग्राम दिल की आवाज फनफ 8 uur इन द आवंड तुत 11 uur इन द आवंड। देखो देखो मैडम सुनो जो कह चले हम, है चीज सबसे बढ़िया और नाम जिसका लॉलीपॉप। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ एक छेड़छाड़ सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत 1966 का फिल्म है, निहतिन सेशन सिस्टर, शंकर जयकिशन संगीतकार और गाने वाले हैं दादा मन्ना डे और रफी साहब जी। पेश करता हूँ सेवा में

देखो देखो मैडम सुनो जो कह चले हम, है चीज सबसे बढ़िया है नाम जिसका लॉलीपॉप। रफी साहब जी और दादा मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये छेड़छाड़ सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं और वो भी शंकर जयकिशन की साज और संगीत पर। प्यार मोहब्बत फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो वालों, प्यार मोहब्बत 1966 का फिल्म है, निगेटिव सेशन सेशन, शंकर मुखर्जी इनका डायरेक्ट किया हुआ एक फिल्म जिसमें देव साहब जी ने काम किया है सायरा बानो जी के साथ, प्रेमनाथ, शशिकला और कौन है, देवत साहब जी, यंकी दास, दुर्गा होते, मुराद साहब जी, असित सेन और सुरक्षना।

ढूंढ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अगले गीत का बोल है रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत जो है मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन, नाइनटी इलाशा जी और किशोर कुमार मिलकर गीत गाएंगे फ्रॉम द मूवी पेइंग गेस्ट। और पेइंग गेस्ट जो है 1957 का फिल्म है। नीहतीन सीवन फैफ्त पेश करता हूँ सेवा में।

ढूंढ दूं अचल जमाना क्या कहेगा। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी ने गीत मिलकर गाए हैं रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग, वो भी मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ। संगीतकार थे एस देव बर्मन, मेरे प्यारे सुनने वालों, सचिन देव बर्मन। पेइंग गेस फिल्म का नाम, पेइंग गेस 1957 का फिल्म है, 1957। और सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है देवानंद नूटन का एक फिल्म, मूवी फिल्म हो मेरे प्यारे सुनने वालों। पेइंग गेस बहुत खूबसूरत मूवी है और गाने लाजवाब बेमिसाल। ले चलता हूं आपको अगले गीत की ओर, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, गीत का बोल है और शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है, रफी साहब जी की आवाज, एस डी बर्मन संगीतकार। फिल्म का नाम गाइड और ये फिल्म 1965 का है, 1965। रफी साहब जी

प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। रवि साहब जी की आवाज, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर फिल्म का नाम गाइड मेरे प्यारे सुनने वालों 1965 का फिल्म है नीहतीन फैफन सिस्टर। और ये फिल्म आपको मालूम रहे, फिल्म का जो प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही देव साहब जी देवानंद जी और इनके छोटे भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट किया है। देवानंद साहब जी ने मूवी में काम किया है वहीदा रहमान के साथ, किशोर साहू, अनवर हुसैन। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, तो 65 के बाद हम आपको 2 साल वापस ले चलेंगे 1963 की ओर, नेहतीन द्रियन सेसर। और एक गीत जो है रोमांटिक रूठना मनाना सॉन्ग, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, जिसका संगीतकार है एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन मिलकर गीत गाएंगे रवि साहब जी और लता जी। तेरे घर के सामने फिल्म का नाम, तेरे घर के सामने इतनी हतिंद्रियन से सख देखो रू थाना करो।

सीखो रूठा ना करो, तुम सताया ना करो। या दैट वाज नटुलक लता जी और मोहम्मद रफी साहब जी, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए, सचिन देव बर्मन की सांझ और संगीत पर। फिल्म का नाम तेरे घर के सामने और ये फिल्म 1963 का है। निखिलेंद्रियन सेसख देव साहब जी का प्रोड्यूस और एक्ट किया हुआ मूवी, छोटे भाई विजयानंद ने डायरेक्ट किया है, नूटन ने साथ दी है मूवी में, ओम प्रकाश राजेंद्र नाथ। मेरे प्यारे सुनने वाला आखिरी गीत हम पेश करने जाएंगे, इस आखिरी गीत के बाद हम यहाँ से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से फिर कल मिलेंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज रात्रि में 8 बजे से 11 बजे। शारदा जी अटलिस, पूनम जी अट सेंट मार्थ और अनिता जी अट सुरिनाम, थैंक यू लिवेल आप के ऐप के लिए। मेरे प्यारे सुनो, ये आखिरी गीत फ्रॉम द मूवी माया पेश करने जा रहा हूँ, 1961 का फिल्म है, निहति नैनन सेसख सलील चौधरी जी के साज और संगीत पर, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत, रफी साहब जी गाकर सुनाएंगे रोमांटिक सॉन्ग की कोई सोने की दिल वाला, डायरेक्टर केशव साहब जी, देवानंद और माला सिन्हा का एक फिल्म। मिलते हैं कल मेरे प्यारे सुनोलो लेकर प्रोग्राम जब हम हाजिर रहेंगे दिल की आवाज, और वो भी रात्रि में 8 से 11 बजे लाइव हियर ऑन यू आर। रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

ओ कैरल ओ कैरल, अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनने वालों। Het is vandaag boudoir, 27 mei का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और उजाला कॉफी चाय मिदक शो में अभी आने वाला है वही आदमी। या ना कम दी मान ही बिन और हमें कौन सी पहन के आएगा। हम कन्हैया इतना गर्म वे रहा दस कन्हैया से ही कर कोर्ट ब्रुक पर है। मैं आज वीरवा एकदम से फरामदर हो गए हैं। योर तो का मस्टेम तू जाने तो वीरवा जी फरामदर हुए हैं। या दा मुझे वेल एक्स्ट्रा अलर्ट ऑफ जाए। Je moet je aanpassen met het weer, of door het weer. Maar toen zo chickie van, aad garm hega, dus ja, of je denkt van, ah, het naar garm nou hega, maar ja, vergis je niet hoor. Maar aad tot handa hega, pier. Kan je naar 30 graden, aad je 20 graden.

0: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
1: Ye kya?
2: Tofa.
1: Tofa? Tofa to mujhe dena chahiye tha.
2: Tumse tofa maine le liya hai.
1: Ji, mujhse?
2: तुमसे तुम्हारी टीचर
1: जोकर इसका क्या करूं
2: इसे अपने पास रखो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्ही को लौटा रहा हूं
1: जी मेरे लिए
2: देखो एक दिन राजू बड़ा होगा लेकिन जोकर राजू ऐसा ही रहेगा भोला मासूम इसे जिसके हवाले करना सोच समझ कर करना दुनिया में जोकर के साथ जो करता है मजाक करता है

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो दे अवे प्लेस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहाँ पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।